किंतु पथिक इस पथ पर जो करता सफर, नहीं नहीं वो नहीं देख सकता इस दृश्य को निगाह भर।

है टाइपराइटर टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप करता है जिंदगी की हर कहानी लिखता है